0: Yenu.
1: Kanung Rose, my making.
2: मस्या छ्या मामु छ्या मस्या लु मामु लु मस्या मिने मामु
0: यंगी रिमथिम डिंगी जो थन लबे लागिरी यंगीला लोलोनो प्रयास की
3: कार्यक्रम आदिवासी संसार
0: रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्जरी
1: नाको रसेमु नजाटनी पट्ट लाफा को केरा सेके हुँसनी है।

हेलो बाबू, सुनिए ना, आपकी शादी ना किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं हो रही है। हुस्न की मलिका बेहद खूबसूरत हीरोइन से हो रही है, तो आपको भी एकदम हीरो की तरह मस्त एकदम बाल बाल सेट करके हैंडसम हंक बन के आना। और हाँ, शादी के दिन ना मेरी सासू माँ को बोल के काला टीका लगवा लीजिएगा। हमारी जोड़ी को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए।

0: भाई साहब संयोग तो देखिए, इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है, माही।
1: एकदम बैट बॉल जैसी जोड़ी है। वेट फॉर इट।

0: देशमा फेर भरिने बोनस चाउचाउ।
1: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 9856202779।
2: प्रणाम अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराही 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन की आवाज।

0: Anun goes, man hagin.
1: छ्या मामु छ्या मस्या लु मामु लु मस्या मिनै मामु
2: यंगी रिमथिम दिंगी जो थन लबे लागिरी यंगीला लोलोनो प्रयासकी
3: कार्यक्रम आदिवासी संसार
2: रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्जरी
0: नाको रसे मुन्न जाटनी पट्टा लाफा को केरसे की मुस्नी है।

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टूडियो अहिले रातिको 9 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301